उठाई और इसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर, पेशानी और मुंह ढक गया और आंख खुली रही। इब्ने अब्बास करीब करीब यही तफसीर करते हैं, उनके जो अखवाल इब्ने जरीर वगैरह ने नकल किए हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकले तो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर से डालकर मुंह छुपाएं और सिर्फ आंखें खुली रहें। अल्लामा अबू बकर जस्सास कहते हैं, अबू बकर जस्सास अहकामुल कुरान है उनकी जिल 3 सफा 458 पर, कि ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि जवान औरत को अजनबियों से अपना चेहरा छुपाने का हुक्म है और उसे घर से निकलते वक्त सतर और इफ्फत मादी का इजहार करना चाहिए ताकि मुश्तबे सीरत और किरदार के लोग उसे देखकर किसी लालच में मुब्तला न हो। अल्लामा ज़मख़्शरी कहते हैं कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें और इससे अपने चेहरे और अपने अतराफ को ढांक लें। अल्लामा निजामुद्दीन निशापुरी कहते हैं कि अपने ऊपर चादर का एक हिस्सा लटका लें, इस तरह औरतों को सर और चेहरा ढांकने का हुक्म दिया गया ग़राइबुल कुरान में। इमाम राजी कहते हैं कि इससे मकसूद यह है कि लोगों को मालूम हो जाए कि ये बदकार औरतें नहीं हैं, क्योंकि जो औरत अपना चेहरा छुपाएगी हालांकि चेहरा सतर में दाखिल नहीं, उससे कोई शख्स ये तवक्को नहीं कर सकता कि वो अपना सतर गैर के सामने खोलने पर राजी होगी। इस तरह हर शख्स ये जान लेगा कि बापर्दा औरतें हैं और इनसे जिना की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तफसीर कबीर है इमाम राजी की, उसके जिल 6 सफा 591 में है। और इसकी हिकमत क्या बताई गई, इल्लत क्या है? ज़ालिका अदना अय्युरफना, ये इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि मुसलमान औरतें पहचान ली जाएं। जाहिर है कि जो औरत सिर्फ जिस्म नहीं, सर भी, सर नहीं, चेहरे का कुछ हिस्सा भी छुपाकर जा रही है तो देखने वाले उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये दुनिया की बाकी सारी औरतों से मुख्तलिफ है, क्योंकि बाकी सारे मजाहब में औरतों के ड्रेसेस मिलते जुलते होते हैं। आप चाइना में देखें, अमेरिका में देखें, बरतानिया में देखें, दुनिया के चाहे कोई क्रिश्चियन हो या ज्यू हो या किसी और मजहब की बुद्ध मत की हो फॉलोअर, तो ख्वातीन का अमूमन एक ही तरह का कल्चर के एतबार से हाल हुलिया होता है। लेकिन इन सारे कल्चर्स में एक मुसलमान औरत कहीं पर भी हो, खा चाइना में हो या अमरीका में हो, वो अपने इस्लामी लिबास में होगी। ज़ालिका अदना अय्युरफना, ये उसकी पहचान है। हिजाब और पर्दा मुसलमान औरत की शनाख्त है, आइडेंटिटी है, पहचान है। और ये कहा गया कि ये इसलिए पहने कि पहचानी जाए ये मुसलमान औरत जा रही। और अगर मुसलमान औरत गैर मुस्लिम औरतों के हुजूम में पहचानी नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि उसने इस्लाम की रूह को समझा ही नहीं, इस्लाम के हुक्म पर अमल किया ही नहीं। अय्यो रफना फला युज़ैन, फिर न सताई जाए, यानी जब पहचानी जाएंगी कि ये औरतें खुद को छुपाने वाली हैं तो कोई उनसे किसी किस्म का गलत मुतालबा नहीं कर सकेगा, कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकेगा। यानी हिजाब सिर्फ जिस्म का हिजाब नहीं, एक मर्द और औरत के दरमियान एक आड़ है, एक रुकावट है कि बस तुम्हारी लिमिट्स यहां है, इससे आगे मत बढ़ो। औरत जब अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपने जेब जीनत की नुमाइश करती है तो वो मर्दों के लिए अट्रैक्शन का और एक खामोश दावत का सबब बनती है। यानी खा किसी की नीयत ना भी हो, मैं ये नहीं कहती कि नऊज़ु बिल्लाह जो हिजाब नहीं करते उनकी नीयतें खराब होती हैं या ये कि वो बुरी ही वजह से ये सब कुछ होता है, नहीं, लेकिन हो सकता वो मासूम हो, उनके दिल में कोई ऐसा ख्याल ना हो, सिर्फ देखा देखी उन्होंने ऐसा कर लिया, मगर उसका नुकसान क्या है कि दूसरे लोगों की निगाहों को किस तरह रोकेंगी। आप देखिए कि हम एक पाव भी गोश्त खरीद के लाए ना तो नंगा नहीं छोड़ते, क्या कहते हैं, ढक के रखो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि लोग प्लास्टिक के सी थ्रू लिफाफे में गोश्त खरीद के लटकाते जा रहे हो, क्या कहते हैं, ढांप कर ले जाओ।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: पे जो कैंडिडेट थे ना वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम होती है, एक जजीरा बना होता है। जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो हडखेर मिनिस्टर लाए थे वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे अभिषेक से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे। दो हमारे एमिसलोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एमिसलोन से। क्यों नहीं आ
1: नहीं
0: सके?
1: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साम हम सामा बात करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल बनता है, सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मैंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मैंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मैंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी। असूली तौर पर डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मैंडेट यहाँ की जो सीरत सेकंड मैंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मैंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाए। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, गुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
2: अदनान, इसमें अगर
1: शायद
2: आप
1: ये
2: वजाहत
1: जरूरी
2: कर दें, साथ
1: साहब।
2: साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं। क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है, मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशन से करते हैं।
0: साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की है, शाह साहब ने एक बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो ओहदे लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेलन, वो दो हिस्से में होती थी रेकियो, अब वो एक रेकियो में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसिलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। हाँ, तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं 4 साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुबा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल में इतनी जॉब होती है ना, वो इसने 3-4 मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको अब बात कर देता हूँ, ओपन हमारी बात हो रही थी कुमाऊँली पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है, मुझे पता है कि 2 या 3 साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है, कहता कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ

0: कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना, इसकी मिस्ट्री भी तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये मार्चन लेकर खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, उसने इसको ली है। कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है की मीटिंग, जुमे को तो काम ही करते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है और आपका उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूगो में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती है। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
1: अच्छा साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
2: ये अदनान, आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे, क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपने रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ, या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंक के फलकेली उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने कहा, और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमेरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं है मैं, तो वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाई स्टार्ट का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथ ही उनको नेशनलिटी मिली थी, तो उनकी नेशनलिटी बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने हाई स्टार्ट ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने राब्ते, ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने राब्ते किए और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से राब्ते करूंगा, और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम 1 साल पहले होता तो अब तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते थे। आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे सेंटर हो हमने ये आपकी आवाज से सुना है वो सुना है। मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं किसी सेंटर में जाऊं कि ना जाऊं क्योंकि वो रोक लेते हैं लोग। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि लोगों की इतनी इज्जत हो गई है आप लोगों की वजह से, और ये तो आप लोगों का कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है और कि लोग मुझे अब सुनते हैं मुझे गाय पूछते हैं मुझे कहते हैं। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि मैंने अल्लाह से यही सोचा था कि बस मैंने कहा था कि मैं तो मुझे नहीं था पता क्या, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोग का शुक्रिया मेरे पे,
1: नहीं,
0: मैं तो ये सारा
1: मेहरबानी
0: आपको
1: आपकी,
0: भी
1: आप टाइम
0: शुक्रिया।
1: निकालते हैं, टाइम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं।
0: देखिए राजा साहब ये तो आपकी है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी और मैं इसका शुक्रिया अदा आपका कभी बोलूंगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी से भांजा है मेरी बेटी है वो जहां जाते हैं वहां वो यंग से पूछते हैं तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है आप लोग, मैं पीछे हट जाता हूँ आप लोग आगे आ जाएं क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलने, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन, हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है, और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है। इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, कुछ देर
2: यही यही यही अदनान, यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे बॉडी सेल्स के बारे निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैं यही चाहता हूं कि आप अवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ्फुज मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये रास्ता है राजा साहब। देखिए, वो जो जो दो दो दो अलहदा चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जरा थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना, वो ये था कि जब आप कोई बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये, अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे, आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका मकान उन्होंने छीनने की कोशिश की होगी, चार साहब को आपको पता होगा उस केस का। तो आप ये क्या कहते हैं क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे तेजपाल के पीछे के लिंक आने लग जाते हैं और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटरग्रेशन मिनिस्टर है मोहसको और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है लेगुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो
1: चले, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ।
2: अदनान, बहुत बहुत खुशी हुई है और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और अजीज खान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे हमारी उम्रें इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
0: शुक्रिया आप दोनों का, हम लोगों को फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको,
1: अल्लाह
2: हाफिज।
1: बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप शाम के प्रोग्राम में दोबारा चीज को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाजत लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा।
2: जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
1: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो है वो سوال و جوابات کی محفل میں وہ اس کو لے رہے تھے، عدنان کو لے رہے تھے، سمجھنا ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: खुद ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मुहम्मद इश्रम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।